0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে বা নদীতে মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে খারাপ আবহাওয়ার কারণে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার এবং তা বেড়ে 65 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে মৎস্যজীবীদের 3রা জুলাই থেকে পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज

के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा,

सुख की आशा में कि अब भी शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर चार दिनों में वापस लौटा दें। यदि ब्रज प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ, यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत रथ लेकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय ने अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोक

0: শুনলেন ভজন শিল্পী পাপিয়া ঘোষ। আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা পঁচাত্তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে ও নিউজন এআইআর অ্যাপে।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानिता काईची इत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाईची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेषगहन संशोधनस्य भागरूपेण

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है।

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार

0: शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका।

0: श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to

শুনলেন রজনীকান্তের গান, শিল্পী কুমকুম ভট্টাচার্য।

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर दोस्तों यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बज चुके हैं 9:10 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके रसधारा। दोस्तों रसधारा कार्यक्रम में हम रहते हैं 10 बजे तक आपके साथ और जब भी हम आते हैं लाते हैं एक विषय और

करते हैं उसी विषय पर। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे कार्यक्रम में करेंगे इसी पर चर्चा। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 को अधिनियम किया गया था। ये केंद्र सरकार को सभी रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। ये अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। ईपीए का अधिनियम जून 1972 स्कॉटहोम सम्मेलन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत के मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया था। संवैधानिक प्रावधान ईपीए को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम किया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वनजीवियों की रक्षा करने के प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।

फिल्म बूंद जो बन गए मोती से दोस्तों आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत, सतीश भाटिया का संगीत और भारत व्यास के बोल। दोस्तों ये अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना है। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारित करना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन का निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपाय के अधीन प्रतिबंध लगाना जिनमें किसी उद्योगों के समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा। केंद्र सरकार इन अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें संबंधित शक्तियां एवं कार्य सौंप सकती है।

फिल्म मधुमति से दोस्तों आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत सलील चौधरी का संगीत शैलेंद्र के बोल। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति है, किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना उसका निषेध या विनियमन करने की शक्ति है, बिजली पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियम करने की शक्ति है, प्रदूषक उत्सर्जन पर प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति या संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जक करने की अनुमति नहीं होगी, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर आवश्यक सहायता के साथ कारणों से प्रवेश करने के अधिकार होगा, अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश अधिसूचना एवं विदेशों के अनुपालन के निरीक्षण हेतु व किसी भी उपकरण औद्योगिक संयंत्र रिकॉर्ड रजिस्टर दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच और यदि आवश्यक हो तो जब्त करने के लिए के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। ये गीत राजेश रोशन का संगीत और देव कोहली के बोल। नौ बजकर 32 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है रसधारा, आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचेता पर दोस्तों। और आज रसधारा कार्यक्रम में मैं बात कर रहा हूं पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नियंत्रण के बारे में। रहूंगा इस कार्यक्रम में 10 बजे तक आपके साथ, और आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर या फिर न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर भी। आइए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं। पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करना, ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देना, केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने का अधिकार है, सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा पानी मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकती है, अपराधों के लिए दंड अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन न करना या उल्लंघन करना अपराध माना जाता है, ईपीए के तहत किसी भी अपराध का दंड 5 साल तक की कैद या 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है, कंपनियों द्वारा अपराध यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो तब तक ये साबित न हो जाए कि अपराधी कौन है, अपराध के समय नियुक्त व प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी है दोषी माना जाता है।

फिल्म रिफ्यूजी से दोस्तों सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे गीत अनु मल्लिक का संगीत जावेद अख्तर के बोल। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया है तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा जब तक कि अपराध अन्यथा साबित न हो। विभाग के प्रमुख के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है तथा तदनुसार दंडित किया जा सकता है। अपराधों का संज्ञान, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत में किसी द्वारा नहीं की गई हो, केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण। एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के पास आया हो।

फिल्म लगान से दोस्तों आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर, महादेवन, शान, किशोरी ग्वारीकर की आवाज में ये गीत। संगीत से सजाया था ए आर रहमान ने, बोल से सवारा था जावेद अख्तर ने। आइए दोस्तों बात करते हैं अधिनियम की कमियों के बारे में। अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण, अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है, जहां व्यापक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती है और राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं, अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है। सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना, यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे शोर, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली और विकिरण तरंगों की प्रदूषक की सूची में शामिल नहीं है, जो पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं।

फिल्म गुरु से दोस्तों श्रेया घोषाल उदय मजुमदार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत एआर रहमान का संगीत गुलजार के बोल। दोस्तों बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत लेकिन थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा ठीक 12 बजे इसी चैनल पर कार्यक्रम सुर भी लेकर और अगला कार्यक्रम होगा इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। तो कहीं मजा ही बने रही है आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि

0: भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता और आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के सफर में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शेरी। आप सबों को सूफिया का पुरखलूस आदाब।

आपको बता दी चलूं कि स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त हुआ है 10:16 और 32 सेकंड, यानी कि ये इशारा है प्रोग्राम की पहली पेशकश, अंजुमन प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। आईना से रूबरू होने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए भी समाप्त फरमा सकते हैं, और अगर आप ऐप लेना ना चाहें तो कोलकाता भी संचार चैनल कहीं टाइप करें और कभी भी कहीं भी बैठकर हमारे प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ हों। और अब चलिए, वक्त हो चुका है आईना से रूबरू होने का, और आज हमारे आईना का मौजू है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी के आलमी यौम खेल सहाफत। दुनिया भर में हर साल 2 जुलाई को आलमी यौम खेल सहाफत यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद खेलों की सहाफत से वाबस्ता सहाफियों की खिदमत, जर्नलिस्ट की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है, खेलों की सहाफत की अहमियत को उजागर करना और खेलों के जरिए अमन, दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को फरोग देना है। खेलों के सहाफी सिर्फ मुकाबलों की खबर नहीं देते बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, जद्दोजहद, कामयाबी और नाकामयाबी को भी अवाम तक पहुँचाते हैं। खेल सहाफत सहाफत की एक अहम शाख है। इसके जरिए मुख्तलिफ खेलों, कौमी और बैन अक्वामी मुकाबलों, नए रिकॉर्ड्स, खेलों खिलाड़ियों की कारकर्दगी और खेलों की दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से आवाम को बाखबर रखा जाता है। खेलों की खबरों से नौजवानों में खेलों का शौक बढ़ता है और उन्हें सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब होने का मौका मिलता है। आज के जदीद दौर में खेल सहाफत सिर्फ अखबारात तक महदूद नहीं रही बल्कि टेलीविज़न, रेडियो, वेबसाइट्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया ने इसे नई वसत अदा की है। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाला मैच चंद लम्हों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। इस तेज़ रफ्तार दौर में खेल सहाफ़ियों की जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं कि वो तस्दीक शुदा और मुस्तनद मालूमात ही आवाम तक पहुँचाएँ। खेलों की मियारी रिपोर्टिंग नौजवानों को मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, बर्दाश्त, टीम वर्क और खेल के मस्बत रवैयों की तालीम देती है। खिलाड़ियों की कामयाबी की कहानियाँ नौजवानों के लिए हौसला अफजा मिसाल बनती हैं और इन्हें अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए जद्दोजहद करने का जज्बा अता करती हैं। आलमी यौम खेल सहाफत हमें यह एहसास दिलाता है कि खेलों के सहाफ़ी माशरे में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो न सिर्फ खेलों की खबरें पहुँचाते हैं बल्कि खेलों की सकाफत कौमी यकजहती और आलमी भाईचारे को भी फ़रोग देते हैं। हमें चाहिए कि हम खेल सहाफ़ियों की खदमात का एहतराम करें और सच्ची, जिम्मेदार और मियारी खेल सहाफत की हौसला अफजाई करें ताकि खेलों के जरिए एक सेहतमंद, बाशऊर और मुस्बित माशरा तश्कील दिया जा सके। मौज़े सामीन, अभी आप आईना से रूबरू थे और हमारे आईना का आज मौजू था खेल सहाफत, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और अब चलिए समात फरमाते हैं, आपके साथ मैं भी सुनती हूँ, लुत्फ़अंदोज होती हूँ, नीरज सिद्धार्थ और कविता सेठ की आवाज़ों में फिल्म कॉकटेल का ये नगमा, शायरी इरशाद कामिल की और जिसे मौसीकी से सजाया है प्रीतम ने।

आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ों में फिल्म कॉकटेल का नगमा, शायरी इरशाद कामिल की और जिसे मौसिकी से सजाया था प्रीतम ने। वक्त का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। इस स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चुका है 10:25 और 52 सेकंड, यानी कि ये भी इशारा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें पुरानी होती जाती हैं और उन पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ें ले लेती हैं, जैसे कि वक्त बदल कर कोई और वक्त आ जाता है, समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। सदियों पुरानी चीज़ें आज नहीं और आज जो है वो कल नहीं होगा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग भी तजुर्बे में इतने माशाल्लाह इतने तजुर्बे

क्रॉकरी सेट हैं जो अभी आप ढूंढते रह जाएंगे. आप चाहेंगे हम बहुत सारे पैसे देकर खरीदें पर वो नहीं मिलेंगे. ऑप्शंस वगैरह में भी जाएंगे तो भी शायद हमें ना मिले. तो ये सारी जो चीज़ें हमें हमारे बुजुर्गों से तजुर्बों की सूरत में या सामान की सूरत में मिली है ना, यकीन कीजिए ये वो कीमती असासा हैं. ऐसे जैसे शीशे की बोतलों खूबसूरत से गुलदान बना सकते हैं, लैंप या सजावटी अशिया में भी तब्दील किया जा सकता है, टीन के खाली डब्बों को कलमदान बनाया जा सकता है, लकड़ी के पुराने तख्तों पहले के ज़माने के जो लकड़ी के फर्नीचर है ना, वैसे फर्नीचर का भी दोबारा फैशन आ रहा है. लेकिन अब वो जो पहले के कारीगर हुआ करते थे, पहले की जो लकड़ी हुआ करती थी ना, चाहे दोबारा फैशन भले ही आ जाए लेकिन आपको वो कारीगरी वो सन्नाई वो सारी फनकारी तो नहीं मिलेगी भाई, ये तो आप तय कर लीजिए. इसलिए जो पुरानी फर्नीचर जिनके यहाँ है एंटिक पीसेस, पलंग अलमारी ड्रेसिंग टेबल, हमारे नानी दादी का जो ड्रेसिंग टेबल हुआ करता था, आज छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भले मिल जाता है, आज छोटे छोटे फ्लैटों में हम रहते हैं, जगह कम होती है, हमें वो बड़ा सा सिंगारदान हमारे पास रखने की जगह नहीं होती, हम सब बोलते हैं हटाओ हटाओ इसे हटाओ. लेकिन अगर हमारे पास जगह है और वो बड़ा सा सिंगारदान अगर आप उसे पॉलिश करके रखें तो यकीन कीजिए कि आपके घर का जो लुक है ना वो एकदम चार चांद लगेगा. एक वो एक अलग ही एक महल एक अलग ही लुक देगा आपके घर को. अभी तो फिर से फैशन आ रहा है कि हम घरों को बिल्कुल उस तरह से सजा रहे हैं जिस तरह से पहले ज़माने में महलों में या नवाबों के कमरे सजे हुआ करते थे. वो गांव तकिया लगाना वो सब रखना. तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं, हमारे नानी दादी की चीज़ें मौजूद हैं ये पुरानी अशिया, तो आप इनसे बिल्कुल बेजार ना हो, बल्कि ये ना सोचें कि ये काट कबाड़ है, बल्कि इन्हें बहुत संभाल कर रखिए, इनकी हिफाजत कीजिए और इनसे घर को अपने सजाइए, इनसे अपने तन को सजाइए, इनसे अपनी ज़िंदगी को संवारिए और सजाइए. घर गृहस्थी में ऐसी अशिया का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है. इससे घर के खराजात तो बचते हैं, सफाई बरकरार रहती है और चीज़ों की कदर करने का जज्बा भी पैदा होता है. अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की चीज़ों को कदर करेंगे ना तो आपके आने वाली नस्लें ना आपकी विरासत की हिफाजत करेंगी, कदर करेंगी. अगर वो देखेंगे कि आप ही पुरानी चीज़ों को गठ कबाड़ समझ कर फेंक देते हैं तो वो जाहिर सी बात है आज जो हमने जमा किया हुआ है ना हमारे बच्चों के लिए, कल आज हमारा भी सब कुछ ना उनके लिए काट कबाड़ ही हो जाएगा. तो अगर हमें अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना है कि पुरानी अशिया की किस तरह हिफाजत करनी है, किस तरह उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना है और किस तरह से उन्हें सजा संवार कर रखना है, तो ये पैगाम तो हमें खुद अपने अमल के ज़रिया देना है. हमें उन्हें सिर्फ बताना नहीं है, ज़बानी सिखाना नहीं, बल्कि हमें अमली तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर उन्हें करके भी दिखाना है कि देखिए इस तरह से विरासत की हिफाजत की जाती है. दोबारा इस्तेमाल का रुझान सिर्फ घरों तक महदूद ना रखें बल्कि स्कूलों दफातर और समाजी इदारों में भी इसे अपनाया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं जैसे थैले बनाए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के थैले देखिए अभी बिल्कुल कितना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन हमारी नानी दादी क्या करती थी जब कपड़े पुराने होते थे तो उस काट के ना थैले बनाया करती थी. अगर ये रुझान हमारे फिर अपना लें तो कितना अच्छा हो. पुराने फर्नीचर की मरम्मत और इलेक्ट्रॉनिक अशिया वगैरह जो होती है ना उसकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए. हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी के वसी तजर्बात रखते हैं, वो हमेशा फजूल खर्ची से बचते हैं, चीज़ों की हिफाजत करनी और हर नेमत की कदर करने की नसीहत करते हैं. पहले ज़माने में लोग पुराने कपड़ों बर्तनों और घरेलू सामान को मुख्तलिफ तरीक़ों से दोबारा इस्तेमाल करते थे. यही वजह थी कि न सिर्फ इनके खराजात कम होते थे बल्कि चीज़ें ज़्यादा अरसों तक कारामंद रहती थीं. बुजुर्गों का कहना है कि हर चीज़ को फौरन ज़ाय करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि इसे किसे और मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. अच्छा मैं तो ये भी बताना भूल गई कि पहले ज़माने में मम्मी क्या करती थी ना, जब मैं बड़ी हो रही थी मेरी मम्मी अपने कपड़े को काट कर छोटा करके मुझे पहनाया करती थी, तो ये भी होता था पहले. लेकिन अभी क्या होता है हम ऐसा नहीं कर पाते, अभी हर वक्त नया कपड़ा खरीदना हमें हर चीज़ नहीं चाहिए होती है. लेकिन पहले ज़माने में हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग ये करते थे कि पहले की दादी दादी के कपड़ों से मम्मी के कपड़ों को काटकर बच्चों के कपड़े बना दिए जाते थे. उनके मशवरों पर अगर हम अमल करते हैं ना तो हमारे माहौलियाती मसाइल के तनाजुर में भी ये बहुत अहमियत रखता है. कैफ़ शेयर की आदत पैदा होती है, घरों के खराजात में कमी आती है, माहौल साफ और महफूज रहता है, बच्चों में जिम्मेदारी और वसाइल की कदर का जज्बा पैदा होता है, तख्लीकी सलाहियत का फ़रोग मिलता है. जी हाँ, अगर आप किसी पुरानी चीज़ से कोई नई चीज़ बनाते हैं ना तो आपके अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन भी तो पैदा होता है.

मैंने जाना है कि मोहब्बत मौसम नहीं, मैंने जाना है कि मोहब्बत मौसम नहीं, अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। मोहब्बत सावन नहीं टूट कर बरसे, मोहब्बत आग नहीं सुलगे भड़के और बुझ जाए, मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए, मोहब्बत तो चांद की मानिंद है जो बढ़ता है घटता है निकलता है छुपता है मगर फना नहीं होता। जी ये एक मोहब्बत प्यार एक ऐसा जज्बा है जो हर दिल में है, बल्कि ये मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ताला ने जानवरों हैवानों में भी रखा है, और यही एक जज्बा है जो इंसान में इंसानियत को बरकरार रखता है। यही एक जज्बा है मोहब्बत का जज्बा जिससे मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खित्ते में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बंध जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ लैला मजनू की नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ शीरी फरहाद की नहीं होती, मोहब्बत मेरी और आपकी भी होती है, मोहब्बत माँ बाप से भी होती है, मोहब्बत दोस्तों से भी होती है, मोहब्बत अपने मुल्क से भी होती है, अपने मुल्क में रहने वाले दूसरे कौम के लोगों से भी होती है, मोहब्बत दुनिया के तमाम लोगों से हो सकती है, मोहब्बत हर मजलूम से हो सकती है, मोहब्बत हर मासूम से हो सकती है, मोहब्बत फूल से हो सकती है, मोहब्बत बच्चे से हो सकती है, मोहब्बत जानवर से भी हो सकती है। मौज़े सामी मोहब्बत तो कभी कभी बेजान चीज़ों से भी हो जाती है। जी हाँ हमें वो चीज़ें जिससे किसी की यादें वाबस्ता होती हैं, जैसे कि ख़त किसी प्यारे किसी अजीज़ का, वो ख़त किसी की, वो कोई वो एक सामान जो उसने हमें तोहफे में दी हो, वो बेजान चीज़ें जना जो जिनके सीने में ना दिल धड़कता है जना सांसें लेती हैं जना कुछ महसूस कर सकती हैं, लेकिन हम उनके ज़रिए बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। तो मोहब्बत का ये जज्बा ही इस दुनिया को बनाने का ज़रिया बना। खुदा ताला रब्बुल करीम ने अपने महबूब के खातिर ये दुनिया बनाई, और ये दुनिया जब ख़त्म होगी तो वो मोहब्बत का जज्बा ही रह जाएगा सबसे आखिर में, जो फना कभी नहीं होगा। महबूब अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब बंदों को अपने करीब करेगा, अपना दीदार नसीब करेगा। तो ये भी तो मोहब्बत ही है, पहले जुदा हो जाना और फिर मिल जाना, पहले खुद से जुदा कर देना ज़मीन में पटक देना और फिर अपने पास बुलाकर अपना दीदार नसीब करना, ये सब मोहब्बत है, ये सब इश्क है। तो चलिए आज हम गर साज छेड़ा में बात कर माफ़ कीजिएगा गज़ल उसने छेड़ी में हम बात करेंगे मोहब्बत के जज्बे पर, और यकीन कीजिए इस मोहब्बत के जज्बे पर तो जितनी भी बात की जाए कम है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी बल्कि आपको सुनाऊँगी भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में कतील राजस्थानी की शायरी को, जिसे मौसीकी से सजाया भूपेंद्र सिंह ने।

आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। शायरी थी कतील राजस्थानी की और जिसे मौसीकी से सजाया था भूपेंद्र सिंह ने। और बात हो रही थी इश्क मोहब्बत प्यार की, जी हाँ, जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि ये एक ऐसी दास्तां है जो रोज़े अव्वल से चली है और ता कयामत रहेगी। लेकिन मोहब्बत को अगर मोहब्बत की तरह इबादत की तरह किया जाए तब ना, आजकल लोगों ने मोहब्बत को कारोबार बना दिया है, बाजारी बना दिया है। मोहब्बत जब इश्क का दर्जा पा लेता है, प्यार जब उस मंजिल तक पहुंच जाता है कि धड़कनों के धड़कने से भी, दिल के धड़कने से भी मोहब्बत के इबादत में खलल पड़ता है, तो राहत इंदौरी जैसा शायर लिखते हैं, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में ये खूबसूरत गजल। प्यार करना तो एक इबादत है, बोल है मसरूर अनवर के और जिसे मौसीकी से सजाया है तलत अजीज ने।

आप सुन रहे थे प्यार करना तो एक इबादत है, तलत अजीज की आवाज में, तलत अजीज की आवाज में मसरूर अनवर की शायरी को मौसीफी तलत अजीज की। बिल्कुल, प्यार करना एक इबादत है और इबादत करना भी एक इश्क है। अगर मोहब्बत और इबादत को जोड़ दिया जाए तो इश्क हकीकी कहलाता है। जी हाँ।

अगर हूरों के लिए इबादत की तो क्या की, जन्नत के लिए इबादत की तो क्या की, अगर फ़र्ज समझ कर इबादत किया तो फिर क्या किया। इबादत तो इश्क का दर्जा, इश्क का दर्जा तब पाता है जब बंदा ये सोचता है कि इबादत उसे अपने महबूब के करीब करेगा, उस ज़ात के करीब करेगा, उस ज़ात का दीदार नसीब करेगा जिसने कुल कायनात बनाई है। और जब इस तरह की इबादत होती है तो वो इबादत इबादत नहीं रहती बल्कि इश्क हकीकी बन जाती है। जी हाँ, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर दोस्तों यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो की घड़ियां बज चुके हैं 12 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके सुरभि। और सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा है। आज चर्चा में दोस्तों हम बात करेंगे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना है। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का काम भी करती है। खेल पत्रकारिता का महत्व केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये खेलों की जानकारी विश्लेषण और कहानियां प्रस्तुत करते हैं जो दर्शकों को खेल के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी चर्चा है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के बारे में। अब हम बढ़ेंगे सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत अगला कार्यक्रम की ओर, वो है पहल दोस्तों। और आज पहल में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है जो किसानों, मत्स्य पालन या पशु पालन करने वालों को शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करता है। इस लोन राशि का इस्तेमाल कृषि से संबंधित सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है। योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के किसानों को साहूकारों जैसे उधारकर्ताओं द्वारा वसूले जाने वाले उच्च ब्याज दरों से बचाना है। केसीसी स्कीम के तहत किसानों को ब्याज दरों में 2% तक छूट भी मिलती है। इसके अलावा किसान लोन का भुगतान फसल की कटाई या उसे बेचने के बाद भी कर सकते हैं। ये सुविधा इस योजना की और खास बनाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे और विशेषताएं दोस्तों, किसी से एक रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट अकाउंट होता है जिसमें से किसान अपनी जरूरत अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। किसी से किसानों को फसलों की खेती कटाई के बाद के खर्च और कृषि से जुड़े निवेश के लिए पैसे मिलते हैं। केसीसी योजना के तहत 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना किसी कोलैटरल्स के मिल सकते हैं, जबकि अधिकतम 3,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। समय पर लोन ईएमआई का भुगतान करने वाले किसानों को सरकार ब्याज में छूट प्रदान करती है। भुगतान अवधि फसल की कटाई और व्यापार अवधि पर आधारित होती है जिसके लिए लोन राशि ली गई थी। स्थायी विकलांगता व मृत्यु पर 50,000 रुपए और अन्य जोखिमों के बदले 25,000 रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज दर। किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर एक बैंक से दूसरे बैंक से अलग हो सकती है। हालांकि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बैंक समय से ईएमआई का भुगतान करने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों में 2% की छूट प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इस योजना पर लगने वाले अन्य फीस व चार्जेस भी एक बैंक दूसरे बैंक से अलग हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड योग्यता शर्त के बारे में दोस्तों बात करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ योग्यता शर्त है, सभी किसान जो अकेले या अधिक व्यक्ति के साथ मिलकर खेती या खेती संबंधित कार्य करते हैं, वे व्यक्ति जो स्वामी सह कृषक है, सभी किराएदार किसान या मौखिक पट्टेदार और कृषि भूमि में बटाईदार हैं, स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह जिसमें किराएदार किसान या बटाईदार शामिल हैं, डेयरी किसान जिनके पास शेड ए पट्टे पर है, किराए पर है, ऐसे भी किसान जो फसल उत्पादन या किसी भी संबंध गतिविधियों के साथ साथ गैर कृषि गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए योग्य हैं। किसानों को बैंक के क्षेत्र पर का निवासी होना चाहिए। इंडिविजुअल या ज्वाइंट पोल्ट्री फार्म वाले किसान 5,000 रुपये और उससे अधिक के उत्पादन लोन के लिए योग्य होने चाहिए, तभी वह किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार हो सकते हैं। इसके साथ ही किसान को बैंक के ऑपरेशन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक दस्तावेज। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को दस्तावेज जमा करने होंगे, वो है पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जैसे पहचान प्रमाण, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य सरकार द्वारा स्वीकृत आईडी, आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षर किए हुए आवेदन फॉर्म। आवेदक ध्यान दे कि दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं बैंक के आंतरिक दिशा निर्देश के अनुसार भिन्न हो सकती है। ऊपर दी गई लिस्ट में केवल कुछ मूल्य दस्तावेज शामिल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। किसान जो केसीसी ऑनलाइन का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कुछ चरणों का पालन करके आसानी से ये कर सकते हैं। पसंदीदा बैंक की वेबसाइट पर जाएं और उनके किसान क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर जाएं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट करें। आवेदन फॉर्म को विधिवत भरें। आवेदन और आवश्यक दस्तावेज को निकटतम बैंक की शाखा में जमा करें। लोन अधिकारी आवेदन के साथ आवश्यक जानकारी साझा करेंगे। लोन की राशि मंजूर होते ही कार्ड भेज दिया जाएगा। केसीसी प्राप्त करने के बाद ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग शुरू कर सकते हैं बैंक शाखा जाकर। किसान क्रेडिट कार्ड चाहने वाले किसान बैंक के अधिकारी से भी मिल सकते हैं और बैंक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी फॉर्म भरने में आवेदन की मदद करेगा। बाद में लोन अधिकारी आवश्यक विवरण साझा करेंगे और आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। किसान क्रेडिट कार्ड नियमित असुरक्षित क्रेडिट कार्ड से अलग है। ग्राहक को बैंक जाना चाहिए और फिर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। लोन अधिकारी उस लोन राशि पर निर्णय करेगा जो आवेदन को दी जाएगी। यह 3,00,000 रुपए तक हो सकती है। एक बार राशि स्वीकृत होने के बाद उपयोगकर्ता को बैंक का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड धारक अब उस क्रेडिट की सीमा पर वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। ब्याज दर केवल लिए गए लोन की राशि पर लागू होगी। समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा कि निकाले गए लोन पर न्यूनतम ब्याज दर लागू हो। केसीसी कार्ड धारक को गतिशील लोन प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता अधिकतम क्रेडिट सीमा तक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोन राशि निकाल सकते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एक बड़ी मूल राशि से जुड़े बड़े ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि। बजट 2020 के बाद सरकार ने किसानों को संस्थागत लोन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वे किसान सम्मान निधि योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना को मर्ज करके ऐसा कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकेंगे, जिसके तहत वे केवल 4% की रियायती दर पर खेती के लिए लोन ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कुछ चरणों का पालन करने की आवश्यकता है। एक पेज का फॉर्म भरा होना चाहिए जो सभी कॉमर्शियल बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और सभी प्रमुख समाचार पत्रों पर प्रकाशित होगा।

सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर भी रिवॉल्विंग क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नजदीकी बैंक शाखा या NABB कार्यालय पर जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हिंदी में आवेदन फॉर्म उन किसानों के लिए भी उपलब्ध है जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते। बैंक अपने विवेक से इस शुल्क को आमतौर पर माफ करते हैं। क्रेडिट सीमा के भीतर कार्ड की प्रोसेसिंग फीस 3 लाख रुपए तक माफ की गई। 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा के भीतर इस क्रेडिट कार्ड के लिए सिक्योरिटी सुरक्षा माफ कर दी गई है। कार्ड के आधार पर प्रारंभिक क्रेडिट सीमा निम्न के आधार पर पेश की जाती है। भूमि क्षेत्र, बोई गई फसल आदि, कटाई के बाद का खर्च और घरेलू आवश्यकताएं, फसल और कृषि संबंधी के रखरखाव के लिए आवश्यकता, अन्य व्यय जिसमें फसल बीमा के साथ साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शामिल है। यदि आप इस कार्ड के लिए योग्य हैं तो आप या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी बैंक शाखा या नाबार्ड कार्यालय जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC के लिए हिंदी में आवेदन फॉर्म उन किसानों के लिए भी उपलब्ध है जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम के लिए से लिए लोन की अधिकतम अवधि 5 साल है। अपने स्वयं के विवेक पर बैंकों की सिक्योरिटी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोन राशि 1,60,000 से कम है। आमतौर पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की और प्रीमियम 1 वर्ष के लिए 15 रुपए है और 3 साल की अवधि के लिए 45 रुपए है। तो दोस्तों ये तो थी पहल। 12:09 हो चुके हैं दोस्तों। अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है सुरभि आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर। और सुरभि कार्यक्रम में दोस्तों मैं रहने वाला हूं आप लोगों के साथ 12:20 तक। आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं 297.6 मीटर अर्थात 1008 kHz मीडियम पर या फिर न्यूज़ ऑन एयर प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर भी। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्म गीत। सुन लेते हैं पहला गीत हमारे कार्यक्रम का।

दोस्तों आप सुन रहे थे टू स्टेट से, ये गीत के मोहन और यशिता शर्मा की आवाज़ में और संगीत से सजाया था इस गीत को शंकर असनलोय ने, बोल से सवर था अमिताभ भट्टाचार्य ने, फिल्म टू स्टेट से सजाया ये गीत। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा फिल्म दिल से ए आर रहमान की आवाज़ में टाइटल गीत और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोग समय बहुत जल्द, तब तक लिए नमस्कार और अगला कार्यक्रम होगा इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे।

0: पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takeuchi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takeuchi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takeuchi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: 7 migrant workers have lost their lives after a big chunk of rock slid and fell on them in Bengaluru South Taluk today. The tragedy struck at the Kaveri Crusher Stone Quarry in Madhapatna village. Those injured were evacuated from the accident site and are currently under medical treatment. The police have registered a case and the hunt is on for the owners of the quarry. The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, 2 foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and

0: summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय

0: से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की।

0: बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 5:21:23 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। उर्वशी के उड़ान में आज हम बातें करेंगे डॉक्टर विभा चौधरी के बारे में।

बिभा चौधरी भारत की पहली महिला कण पार्टिकल भौतिक वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने कॉस्मिक किरणों और मेसान कणों पर महत्वपूर्ण शोध किया और भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनका जन्म 3 जुलाई 1913 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनका निधन 2 जून 1991 को हुआ। क्षेत्र कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स और कॉस्मिक अनुसंधान में इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर बिभा चौधरी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर एवं वैसेकी शिक्षा प्राप्त की। उस समय वे अपनी कक्षा की एकमात्र महिला छात्रा थी। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक देवेंद्र मोहन बोस के साथ बोस संस्थान में शोध कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर बिभा चौधरी ने कॉस्मिक किरणों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने और डीएम बोस ने फोटोग्राफिक प्लेटों का उपयोग करके ऐसे कणों के प्रमाण खोजे जिन्हें बाद में मेसान कणों से संबंधित माना गया। उनके शोध ने आधुनिक कण भौतिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में भी कार्य किया तथा भारत में उच्च ऊर्जा भौतिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। भारत की पहली महिला कण भौतिक वैज्ञानिकों में शामिल हुई। भौतिकी में पीएचडी प्राप्त करने वाली प्रारंभिक भारतीय महिलाओं में से एक। कॉस्मिक रे और मेसान अनुसंधान में अग्रणी योगदान इनका रहा और भारतीय विज्ञान में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही। अगर इनकी बात करें तो डॉक्टर बिभा चौधरी का जीवन संघर्ष, प्रतिभा और वैज्ञानिक समर्पण का प्रतीक है। यद्यपि उन्हें उनके जीवन काल में पर्याप्त पहचान नहीं मिली, लेकिन आज उन्हें भारत की महान वैज्ञानिक महिलाओं में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

और अब कुछ फिल्मी नगमे। आइए सुनते हैं अलका याग्निक का उदित नारायण की आवाज में। फिल्म है कयामत से कयामत तक। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलन का है।

आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म उत्सव से। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर, गीत लिखा है वसंत देव ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है दूसरा आदमी। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत राजेश रोशन का है।

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 6:10:37 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम हिंदी वार्ता। आज का विषय है जलवायु परिवर्तन और हमारा जंगल। मैं आपके साथ हूं।

गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। बढ़ता वैश्विक तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी का पर्यावरणीय संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव हमारे जंगलों पर पड़ रहा है, जो पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जंगल केवल वृक्षों का समूह नहीं है, बल्कि वे जीवन, संस्कृति, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के आधार स्तंभ हैं। वे हमें शुद्ध वायु, जल, भोजन, औषधियाँ और जीवन के लिए आवश्यक अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है और जंगलों की कटाई जलवायु परिवर्तन को और अधिक बढ़ा रही है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन और जंगलों के बीच गहरा और परस्पर संबंध है।

जलवायु परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी के तापमान, वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता और अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में लंबे समय तक होने वाले परिवर्तनों से है। यद्यपि पृथ्वी की जलवायु में प्राकृतिक रूप से भी परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हो रहे तीव्र परिवर्तन मुख्य रूप से मानव गतिविधियों का परिणाम है। औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण तथा वनों की कटाई के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को वैश्विक ऊष्मीकरण कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है।

अगर हम जंगलों के महत्व की बात करें तो जंगल पृथ्वी की अमूल्य धरोहर हैं। वे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन का स्रोत। जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जंगल तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा चक्र को बनाए रखने में सहायता करते हैं। वे पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाते हैं। विश्व की लाखों वनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान जंगली है। जंगलों के बिना जैव विविधता का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। जंगल जल स्रोतों की रक्षा करते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। लकड़ी, औषधियां, फल, गोंद, शहद तथा अनेक वन उत्पादों का प्रमुख स्रोत जंगल ही है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन ने विश्वभर के जंगलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। कई वृक्ष प्रजातियां बदलती जलवायु के अनुकूल नहीं हो पा रही है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन आगजनी की घटनाओं से न केवल लाखों पेड़ नष्ट हो जाते हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में उत्सर्जित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है।

वर्षा के बदलते स्वरूप के कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे जंगलों की वृद्धि और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

तापमान बढ़ने से अनेक हानिकारक कीटों और रोगों का प्रसार तेजी से हो रहा है, जो जंगलों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। जंगलों की कटाई जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। जब जंगलों को काटा जाता है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही कटे हुए वृक्षों में संग्रहित कार्बन भी वातावरण में वापस पहुंच जाता है। आज दुनिया भर में कृषि विस्तार, उद्योग, शहरीकरण, खनन तथा अवैध कटाई के कारण तेजी से जंगल नष्ट हो रहे हैं। इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की गति बढ़ रही है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीर रूप से झेल रहे हैं। भारत के विभिन्न वन क्षेत्र अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे वहां की वनस्पति और वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। तापमान वृद्धि के कारण पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। सुंदरबन के मैग्रोव जंगल समुद्र के बढ़ते जल स्तर और चक्रवातों के कारण गंभीर संकट में है। इससे जैव विविधता और स्थानीय समुदायों की आजीविका दोनों प्रभावित हो रही हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन महोत्सव अभियान, वन जीव संरक्षण कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, वन कटाई पर नियंत्रण करना होगा, प्रदूषण में कमी लानी होगी, जन जागरूकता को बढ़ाना होगा, वन्य जीव का संरक्षण करना होगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए उनके समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। हमारी भी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम सभी छोटे छोटे प्रयासों द्वारा बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हर वर्ष कम से कम एक पेड़ लगा सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना होगा। पानी और बिजली की बचत करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति दूसरों को जागरूक करना होगा। वन संरक्षण अभियानों में भाग लेना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करें। हमें यह समझना होगा कि जंगलों का संरक्षण केवल पर्यावरण में मुद्दा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था जलवायु परिवर्तन और हमारा जंगल। वार्ता यहीं तक, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा औषध रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा सानेता काइचित्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमंत्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयन्त्रस्य संयुक्त

0: रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधि रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिम रूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदद्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 million तीर्थयात्रिणां प्रथमसमूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियमः 20-25 आजीविका सुनिश्चिततायाः ग्रामीणाजीविकायाः सुदृढीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिकादेशः 2020 प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पञ्जीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

गाने सुनते हैं कार्यक्रम गुलगुलसन, गीतकार गजल के कार्यक्रम गुलगुलसन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। आइए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास की एक गजल।

इस गजल के साथ ही गीत और गजल का कार्यक्रम गुलगुलसन यही समाप्त होता है। अब आपके दोस्त रोशन मिराल का आज्ञा दीजिए, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का

0: उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
0: In address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Earlier, India and Japan would exchange several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI.

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30:28 हुए हैं। पेश है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। सबसे पहले एक नजर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना और खेल पत्रकारिता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस वर्ष 94 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। AIPS की स्थापना 2 जुलाई 1924 को हुई थी। खेल पत्रकार खिलाड़ियों और खेल आयोजनों की जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। ये खेल जगत की उपलब्धियों, चुनौतियों और प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाते हैं। खेल पत्रकारिता खेल भावना, निष्पक्षता और अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। आधुनिक युग में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से खेल पत्रकारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। खेल पत्रकार न केवल खेल प्रतियोगिताओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, सफलता और खेल भावना को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। यह दिवस हमें खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने और खेल पत्रकारिता के विकास के लिए प्रेरित करता है। ये थी एक नज़र।

एमएस धोनी के बारे में। भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावना और जुनून है। इस खेल ने देश को अनेक महान खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे प्रमुख है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें प्यार से माही और कैप्टन कूल कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने अपने शांत स्वभाव, अद्भुत निर्णय क्षमता और शानदार खेल प्रदर्शन के बल पर विश्व क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई है।

धोनी न केवल एक महान बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं, बल्कि वे ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत, अनुशासन और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। उनके जीवन की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी देवी है। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड से संबंधित है। बचपन से ही धोनी खेलों में रुचि रखते थे। प्रारंभ में वे फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते थे, तब अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में गोलकीपर थे। एक दिन की बात है, उनके खेल शिक्षक ने उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने का अवसर दिया और यहीं से उनके क्रिकेट जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन्होंने क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और स्थानीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू कर दी। महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने भारतीय रेलवे में टिकट परीक्षक के रूप में भी कार्य किया। नौकरी करते हुए भी उन्होंने अपने क्रिकेट अभ्यास को जारी रखा। धोनी ने घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली तथा उत्कृष्ट विकेट कीपिंग के कारण चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। उनकी मेहनत और लगन ने अंततः उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचाया।

महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ष 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया। हालांकि उनका पहला मैच सफल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई उनकी 148 रन की विस्फोटक पारी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की नाबाद पारी ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली, लंबे छक्के लगाने की क्षमता और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कला ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया।

वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई। उनकी कप्तानी में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्णकालिक कप्तान बने। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। वर्ष 2007 का T20 विश्व कप, वर्ष 2011 का क्रिकेट विश्व कप, वर्ष 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट क्रिकेट में भारत को नंबर एक स्थान दिलाना और अनेक द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में जीत। धोनी विश्व क्रिकेट के ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं। यह उपलब्धि उन्हें अन्य सभी कप्तानों से अलग बनाती है। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट जीवन का सबसे यादगार क्षण वर्ष 2011 का विश्व कप था। भारत ने 28 वर्षों बाद विश्व कप जीता। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के विरुद्ध धोनी ने 91 रनों की नाबाद और शानदार पाली खेली थी। उनके द्वारा लगाया गया विजयी छक्का भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे यादगार क्षणों में से एक माना जाता है। इस जीत ने करोड़ों भारतीयों का एक सपना पूरा किया और धोनी को राष्ट्रीय नायक बना दिया।

बेहद लोकप्रिय हुआ। उन मैच को अंत तक ले जाकर जीत दिलाने की क्षमता रखते थे, जिसके कारण उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माना जाता है। एक विकेट कीपर के रूप में उनके फुर्ती, तेज स्टंपिंग और मैच को पढ़ने की क्षमता अद्भुत थी। वे विकेट के पीछे से पूरे खेल पर नियंत्रण रखते थे और अपने गेंदबाजों का प्रभावी मार्गदर्शन करते थे। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, क्योंकि वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे। जब अन्य खिलाड़ी दबाव में आ जाते थे, तब धोनी धैर्य और समझदारी से निर्णय लेते थे। यही गुण उन्हें एक महान कप्तान बनाता है। उनके नेतृत्व शैली में अनुशासन, विश्वास और टीम भावना का विशेष महत्व था। हमेशा टीम की सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर रखते थे। महेंद्र सिंह धोनी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ये पुरस्कार उनकी प्रतिभा, मेहनत और देश के प्रति समर्पण का प्रमाण है। महेंद्र सिंह धोनी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सिद्ध किया कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और धैर्य के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। एक छोटे शहर से निकलकर विश्व क्रिकेट के शिखर तक पहुंचना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि अनुशासन, संघर्ष और निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खेल नेतृत्व और व्यक्तित्व से यह साबित किया है कि सच्ची सफलता वही है जो मेहनत, समर्पण और विनम्रता से प्राप्त की जाए। भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा और हमेशा वे देशवासियों के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखेंगे। खेल जगत में क्रिकेट प्लेयर MS धोनी के बारे में अभी आप सुन रहे थे और अब आइए चलते चलते कुछ फिल्मी नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है प्यासी शाम, गायक कलाकार मोहम्मद रफीक, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आज सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, अवधित नारायण, गीतकार समीर और संगीतकार जतिन ललित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत

0: विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2

0: 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: में अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी, देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें, जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए, क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल, जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था, उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है। और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच, जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी,
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे, जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है। और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम

0: सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई, जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया, पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है, जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उपज, लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आंकड़े क्या बताते हैं? अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
0: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है, जो बहुत वर्षों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स है, तो ये एक जो पॉन्ड्स है, तालाब है बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारे जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है, वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है, वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि हुआ काफी बड़े पैमाने पर, वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है, और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं, उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है, और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है, कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है, किसानों के अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं, जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं।

0: जी
1: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है, और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जो मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है, कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है,
0: जी
1: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम, मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें, नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
0: जी
1: जैसा आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे, जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में, वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी, जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृहद स्कीम बनाई और
0: जी
1: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
0: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर, विशेष रूप से अगर कहें, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
1: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर डो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
0: जी
1: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के, और जो

0: कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी, और हरवीर जी यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন ও জল পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং জলবায়ু পরিবর্তন ও জৈব বৈচিত্র্য সংক্রমণের মোকাবিলায় দেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কলকাতায় আজ জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমি সামিট বা প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, একে কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যা সমাধান করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানগুলিকে জ্ঞান, পরিকাঠামো, দক্ষতা ভাগ করে নিয়ে দেশের সমৃদ্ধ জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বাস্তবসম্মত সমাধান করতে হবে। মন্ত্রী জানান, জলবায়ু পরিবর্তন জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় ও দূষণ বর্তমানে সর্বোচ্চ বড় চ্যালেঞ্জের অন্যতম। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা আগামীকাল কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের দুদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংসদীয় ও বিধানসভার বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া। এবার বিশ্বকাপের খবর। ফিফা বিশ্বকাপে আজ রাতে লস এঞ্জেলেসের উইঙ্গেলউড স্টেডিয়ামে রাউন্ড অফ 32 ম্যাচে স্পেনের মুখোমুখি হবে অস্ট্রিয়া। খেলা শুরু রাত 12:30, শেষ 32 অন্যান্য ম্যাচে আগামীকাল সকাল টরেন্টোর পর্তুগাল লড়বে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে, ভ্যাঙ্কুভারে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হবে সুইজারল্যান্ড। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আর একবার। ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে ভবতারিণী। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। रूस द्वारा यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में 21 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: भारत ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है।

0: और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी।

0: संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: श्री गोयल ने जापान के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी और उसके विविध मुक्त व्यापार समझौतों और पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति से संबंधित अन्य मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें।
5: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि सर्वमान्य कानूनी ढांचा का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। श्री हरीश ने कहा कि ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभियोजन और प्रत्यर्पण को मजबूत करेगा और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने, धन और हथियार प्राप्त करने से वंचित करेगा। अमरीका, इसराइल और अर्जेंटीना ने रणनीति के विरुद्ध मतदान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर समर्थन मिला। रूस द्वारा यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में 21 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. 21 people killed in Ukraine in massive drone and missile strikes by Russia. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: इन हर एड्रेस Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate the vision into a concrete action." On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including energy and economic security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: ब्रीफिंग मीडिया न्यू दिल्ली दिस इवनिंग, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सेड, "Today's engagements have yielded good results in areas including energy security and economic security."
3: The leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित

पहला ओ जन मन सुन ले ये दीक्षा कुमारी है ये दीक्षा कुमारी हसीनों की सवारी है हसीनों की सवारी।

मगर एक ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए कार्यक्रम चल रहा है, वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गायिका है ही कुछ।

0: आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। सेमीफाइनल में 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जो शुरुआती तीन बैटर्स थी डैनी वियर्ड हॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। एनिन दी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में एक रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीन दी क्लार्क अपना तीसरा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम स्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, अयाबोंग खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज अयाबोंग खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर, खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। ओवर पिच डिलीवरी एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए 143 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है 6 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं। नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
3: दैट सिक्स वाज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Natsiva Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Natsiva Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls they want to limit the damage as much as possible.
1: पिछले 5 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर। नदीन दी क्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे, और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के। तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था, इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीन दी क्लार्क की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा। 154 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का और 2 कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रसाइज, 17.5 ओवर के बाद 154 3 विकेट के नुकसान पर नैट सेवन ब्रंट 45 गेंदों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं, 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर, 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 3 विकेट के नुकसान पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: 12 balls to go, 156 for 3 England, beg your pardon, 154 for 3, how many more can they get? This partnership, which is now worth 131 runs, is the highest ever in a knockout fixture in the T20 World Cup, as far as the women's are concerned. The next delivery, it's going to be bowled by Malaba, the left-arm spinner, who will be bowling her final over of the evening. Delivers this one on the shorter side of good length, angles it towards the body. Natsiva Bruns hangs back and then lofts it, chips it towards deep backward square leg to pick up a couple of runs. Next delivery, she goes for the big slog sweep, hasn't quite got it in the middle of the bat, and it will be caught at deep mid-wicket. Finally, this partnership has come to an end. Natsiva Brunt is out for 75, which happens to be the second highest score by a captain in the history of the ICC Women's T20 World Cup. Only person ahead of her is Amy Watkins of New Zealand, who scored 89 not out. Natsiva Brunt is out for a score of 75, and she will get a standing ovation, not just from the England dugout, but also from all the spectators that are present at the Oval. 75 of 47, which included 11 attractive fours and one huge 85 meter six. England are 156 for 4.
1: नैट सेवन ब्रंट ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने इंग्लैंड को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वो इस मुकाबले में जीत की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि क्रिकेट गौरवमयी अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी कहना इस समय जल्दबाजी होगी। प्रिया कैम का आगमन हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में चली गई थी, हालांकि विकेट कीपर भी उसको रोक नहीं पाई, गैदर नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात है कि बैकअप था, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन का इजाफा।
3: Yes, that has been signalled as byes by the on-field umpire. That takes England's score to 157. Heather Knight once again back on strike. Malaba at the top of her mark, running into bowl what will be the fourth ball of the over. Steps out, does Heather Knight, and completely miscues it. An easy catch for Laura Wolfart at extra cover. And both set batters have now been dismissed. This was a clever piece of bowling from Malaba. Just 70.4 kilometers per hour is the reading on the speed gun, which tells us that she slowed it up, hung it up, allowed the batter to come forward, but eventually Heather Knight got deceived in the flight. She was probably looking to hit it more towards long off, but ended up slicing it, and an easy catch for the South African skipper. Yes, Heather Knight has done her job with this excellent, responsible, mature 58 of 47. However, the fact that England have lost both the set batters with still about 8 deliveries to go means it could be a difference of nearly 10 runs, if not more, in their final score. And that sometimes can be the difference in the end. Danny Gibson is the new batter.
1: ये जो दो बैटर अब दर्पण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दो बेहतरीन बैटर्स के पवेलियन लौटने के बाद, फ्रेया कैंप ऑलराउंडर हैं, 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और डैनी गिब्सन 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दोनों बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ शायद सिर्फ सिंगल होना चाहिए था उसे कपल में कन्वर्ट किया दोनों बैटर्स ने, फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन। तो ये भी एक संयोग है, क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब दो बैटर्स बड़ी साझेदारी होती है, उसके बाद जैसे गेंदबाजी एक पेयर में की जाती है, कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाजों का आगमन क्रीज की ओर होता है, पवेलियन की ओर होता है, वो भी एक साथ होता है। 19 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड।
3: Malaba finishes off with 2 for 25 in her 4 overs. Excellent bowling figures, courtesy that brilliant final over. Before that, her penultimate over also yielded 3. So it was an

0: एंड ऑफ 17।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां

0: expensive start from her. But again, it is not about how you start. It is about how you end. South Africa did not start this tournament on the right note. They started off with a drubbing against Australia. But can they finish on the right note? That is the question. England did not start this innings on the right note. But can they finish on the right note? A slow over penalty has been applied. South Africa have not bowled their overs in time, which means now they will have to have an extra fielder inside the 25-yard circle, which means they can only have three boundary riders, deep backward square leg, deep mid-wicket, and long on are currently those three fielders. Ayobonga Khaka, who has been expensive today, 35 runs off her three overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, does Ayobonga Bongo Khaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid-wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: Ayobonga Khaka अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं। 36 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहली सफलता की तलाश है। मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने दो विकेट हासिल किए थे। फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं। कैंप ने अभी सिर्फ एक गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है। और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल तीन खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्किल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं। अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप चार खिलाड़ियों को सर्किल के बाहर तैनात कर सकते थे। 161 रन, 5 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर। अच्छी वापसी करते हुए Ayobonga Khaka ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है। हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है Ayobonga Khaka के द्वारा 161, 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। सामने हैं गिब्सन, 3 गेंदों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि Ayobonga Khaka की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है। और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, इस बार उससे भी ज़्यादा बाहर। एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है, ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई। तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10। इंग्लैंड 162, 5 विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है। एक रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स। साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है।
0: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। Khaka इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम Freya Kemp's arc। Freya Kemp इज नोन फॉर that bat swing of hers. She's known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side. However, very intelligently, Khaka delivers this one outside the off stump of the right hander, and therefore in the end, even with a stretch, Gibson can not reach the ball. Yet another dot ball, intelligent bowling from Khaka. Next delivery, this time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge, the ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from short third, and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. Two runs meanwhile were taken. Next delivery, which was the final delivery of the innings, it is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England 4 more.
2: ये लगा आभा का

0: Ashoka. It was a good length delivery in line with what would have been the tram line for the umpire to decide it was a wide ball. However, the batter shuffled towards it and hence it hasn't been signalled a wide. Eventually, Gibson was looking to guide it towards third using an open face, but she could not lay bat on ball. The ball went past her, past the wicketkeeper as well, and trickled over into the fence. That means England have ended their innings, ended their quota of 20 overs with 169 for 5. They lost 3 wickets very early. However, then Natsiva Brunt and Heather Knight with an excellent partnership were able to forge a recovery. We will meet you after the innings break. For now, we will head to the studios of Akashwani for a very special program called Free Hit 20.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the 4th wicket between current and former captains Natsiva Brunt and Heather Knight. But subsequently, South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
6: Ji, aur hamare saath mehman hai hamare Khyati Gulani, purv cricketer, Jishanul Yaqeen, purv cricketer, और जी राजा रमन, वरिष्ठ खेल पत्रकार। राजा, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम? क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद, ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है।
7: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे, दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफ़ी है। मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा। 169 काफ़ी है उनके पास, और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके।
5: Kathy, interestingly, that stand of 130 between current and former captains, but on either side of it, not much contributions.
8: Yeah, definitely. The way they have started and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Bryant,